केवेनष्टेयाता न एङता शोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्यं